और वो वही है जिसने जमीन को फैलाया और इसमें पहाड़ और दरिया पैदा किए और हर तरह के मेवों की दो दो किस्में बनाई। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है। गौर करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं।

सूदमंद पुकारना तो उसी का है, और जिनको ये लोग उसके सिवा पुकारते हैं वो उनकी पुकार को किसी तरह कबूल नहीं करते, मगर उस शख्स की तरह जो अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैला दे ताकि दूर ही से उसके मुंह तक आ पहुंचे, हालांकि वो उस तक कभी भी नहीं आ सकता, और इसी तरह काफिरों की पुकार बेकार है।

उसी ने आसमान से मे बरसाया, फिर उससे अपने अपने अंदाजे के मुताबिक नाले बह निकले, फिर नाले पर फूला हुआ झाग आ गया, और जिस चीज को जेवर या कोई और सामान बनाने के लिए आग में तपाते हैं उसमें भी ऐसा ही झाग होता है। इस तरह खुदा हक और बातिल की मिसाल बयान फरमाता है, सो झाग तो सूख कर जायल हो जाता है, और पानी जो लोगों को फायदा पहुंचाता है वो जमीन में ठहरा रहता है। इस तरह खुदा सही और गलत की मिसालें बयान फरमाता है ताकि तुम समझो।

0: क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने खुदा के एहसान को नाशुक्री से बदल दिया और अपनी कौम को तबाही के घर में उतारा।
1: जहन्नम यस्लौनहा वबिसल करार,
0: वो घर दोजख है, सब नाशुक्रे उसमें दाखिल होंगे और वो बुरा ठिकाना है।
1: वजअ

0: जिस दिन ये जमीन दूसरी जमीन से बदल दी जाएगी और आसमान भी बदल दिए जाएंगे और सब लोग खुदाए यगाना और जबरदस्त के सामने निकल खड़े होंगे।
1: وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ
0: और उस दिन तुम गुनाहगारों को देखोगे कि जंजीरों में जकड़े हुए हैं।

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: एक नई सोच,
3: नई सोच,
4: एक नई पहचान,
5: पहचान,
2: एक नई लगन,
5: नई लगन।
4: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
4: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
4: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
4: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
4: यूसीपी की दुनिया।
5: यूसीपी की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
4: सुनते रहिए।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया. अच्छा ऐशा, एज एन इंस्ट्रक्टर, राइट, एज अ टीचर ऑफ लिटरेचर, आप से मैं ज़रूर इस बारे में बिल्ड करना चाहूँगी कि हाउ वुड यू एडवाइस योर स्टूडेंट्स, राइट, बिकॉज आई थिंक यू आर स्टूडेंट काउंसलर एज वेल. हाउ वुड यू एडवाइस स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप अगेंस्ट गॉसिप, और आप इससे मतलब कैसे उनकी ग्रूमिंग कर सकती हैं फॉर अ बेटर कैरेक्टर, और टू कर्टेल इट, टू नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ इट, और वैसे भी जनरली आप क्या समझते हैं कि टीचर्स इस तरह का एनवायरनमेंट कैसे फॉस्टर कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, टू क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर द स्टूडेंट्स.
2: So how can teachers foster this environment? Teachers बहुत कुछ कर सकते हैं अपने एंड पे. और
1: अगर वो करना चाहें तो
2: obviously. और मेरे ख्याल में वो इसकी शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं कि you know, they can, first of all, they can become role models themselves. And how do they do that? They can do this by demonstrating integrity and fairness.
1: Charity begins at home.
2: And professionalism, to cap it all.
1: Of course.
2: And so what does that mean? So it means that you do not do slander.
1: Oh, yes.
2: You don't spread toxic or negative remarks about colleagues. And you just simply practice the values that you wish to instill in your students. All right. So जब आप एक दफ़ा इस चीज़ को बिल्ड कर लें, एक फाउंडेशन आप बिल्ड कर लें, तो उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि यू कैन सेट अप एडिशनल प्रैक्टिसेस. सो यू नो, यू कैन सेट अप ए क्लियर, यू नो, यू कैन सेट अप क्लियर ग्राउंड रूल्स अर्ली ऑन. सो फॉर एग्जाम्पल, इनकरेज लिसनिंग विदाउट इंटरप्शन इन द क्लास रूम.
1: राइट.
2: फ्रेम डिसएग्रीमेंट एज डायलॉग एंड नॉट डिबेट, एंड यू कैन एम्फसाइज रिस्पेक्ट फॉर ऑल व्यू पॉइंट्स. And you can also diversify the syllabus, including authors from different cultures and genders and political positions.
1: Oh, right? Wow.
2: So that way, students would be more open to interpretation and they would be sensitive to varied points of view.
1: I think it's a lovely advice and some beautiful words that you have given. Aapne ek baat ki ke they should practice the values.
2: Exactly.
1: And I hope they realize there are some things.
2: So you teach by example, in other words.
1: Yeah. And I think ke teaching, uski essence ko, it needs to be recognized by the teacher himself first, right? So just like you have mentioned, ke unless we realize it on our own and practice it ourselves, we won't be able to impart it to the others, right? I think it had been a lovely discussion, और मुझे बहुत मजा आया आपके साथ इस बारे में बात करके.
2: मुझे भी बहुत अच्छा लगा.
1: मेरा ख्याल है ये एक पहला छोटा सा स्टेप था दैट वी हैव इनिशिएटेड इनटू कैरेक्टर बिल्डिंग, और हमने एक छोटी सी चीज को डिस्कस करना शुरू किया जो लगती बहुत छोटी है लेकिन असल में इट्स टू मॉन्स्ट्रस एंड टू बिग टू बी हैंडल्ड दैट वे. Or mera khayal hai ki nobody would have unpacked it the way you have done, Ayesha, connecting it with examples from literature. And that also speaks about the importance of literature. You know, literature has been there narrating to us stories for the sake of extracting moral lessons from it, right? Anyways, I'm running short of time. We need to conclude it. And I would just end it. Ayesha, it had been lovely to have you here discussing these wonderful things and imparting wisdom to the students and every listener who is a part of the discussion. Thank you for your time. And I look forward anxiously to the other episodes in the series aimed at character building. Thank you very much for being a part of Safe Spaces, Ayesha. I'll see you next time, definitely. Thank you, everyone who has been listening to us. Thank you for your time. If you have any questions or queries, you can go to the page and type the questions. Take good care of yourself. Aap sun rahe the FM 92.6 UCP ki duniya.

0: इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6 UCP की दुनिया।
5: व्हेन यू आर ऑफ Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

के सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

0: प्रकृति की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हों मुस्तकबिल की, मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हों मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अजीज सामेईन, मेरे सुनने वालों, आपके जहनों में ये बात ताज़ा होगी कि हम एक प्रोग्राम किया करते हैं, उसको अनवान हमने रखा हुआ है, टाइटल है दरूने लाहौर की अनकही कहानियाँ। आज उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज का मौजू जो मैंने चुना है उसका अनवान है छत का इश्क। छत के इश्क के दूसरे पार्ट में मैंने किसको चुना, छत के इश्क में एक और भी तरह के आशिक होते थे अंदरूनी शहर में। वो कौन थे? कबूतरबाज। जैसा मैंने आपको पहले कहा, ये तीसरा मशगला भी था। पहला तो मैंने आपको बताया कि अंदरूनी शहर के लोगों को पतंगबाजी, क्रिकेट, ये तीसरा मशगला ये कम था, कुछ महंगा भी था और कुछ टेक्निकल भी था, कुछ महारत भी ज्यादा चाहिए थी, कबूतरबाजी। देखिएगा, कबूतरबाज भी क्या वो पतंगबाज थे? ये कबूतरबाज है, यानी ये लफ्ज आप बाज जो है ना, बाज बे अलिफ जे, बाजी यानी खेल, प्ले, ये फारसी से निकला। फारसी में लफ्ज होता है बाजीदन, खेलना, बाजी करदन, खेलना। इस लिहाज से कबूतरबाज कबूतर का खेल खेलने वाला, पतंगबाज पतंग का खेल खेलने वाला, इश्कबाज इश्क का खेल खेलने वाला। तो ये आप समझ लीजिए छत का इश्क या इश्कबाज, ये दोनों मौजूद हो सकते हैं। लिहाजा दूसरा जो मैंने इसका उन्वान चुना है सेकंड पार्ट का, वो है कबूतरबाज आशिक। एक हमने ये चीज नोट की लाहौर शहर के दरून में रहते हुए कि घर की मोमटी छत, उसके ऊपर एक मुंडेर सी होती है, थोड़ा सा ऊंचा से एक प्लेटफॉर्म बना होता है, ठीक है जी, उसको कहते हैं ममटी। उस पे जब हम थोड़े से शऊर वाले हुए, हमने देखा कि इतने तो बड़े पिंजरे पड़े हैं और कईयों ने अपनी दीवारों के अंदर ही सुराख करके वहां पिंजरे नस्फ कर रखे हैं। लेकिन ज्यादातर जो पिंजरे थे ना, वो छतों पे नजर आ जाते थे और पिंजरों का साइज बताता था कि जो कबूतरबाज है उसकी माली इस्तेदाद क्या है, उसका खेल में महारत का क्या मकाम है और वो कितना मुशाक है, कितना माहिर है अपने फन में, कबूतरों की तादाद कितनी है। ये तमाम चीजें आप गौर कीजिएगा, इससे आपको पता लगता है कि ये अली कबूतरबाजी नहीं थी। अगर आप पुराने जमाने में लखनऊ का हाल पढ़िए, आपको अक्सर छतों पे यही चीज नजर आती थी। लिहाजा तकसीम हिंद के बाद जब पाकिस्तान माज़े वजूद में आया तो जाहिर है कुछ लोग आके लाहौर में भी आबाद हुए, खास तौर पे पंजाब के इलाके से, और जो यूपी के इलाके से थे वो हैदराबाद कराची की तरफ निकल गए, सिंध की तरफ निकल गए, ठीक है। तो इसलिए ये कबूतरबाजी भी एक अजीब ही शौक है। ये सुबह सवेरे तड़के तड़के, जिसको कहते हैं अल सुबह डॉन, एट डॉन जब धुंधल का होता है, अभी सुबह काजिब का वक्त जो होता है, तो ये छतों पे चढ़ जाते हैं, अपने कबूतरों को दाना डालते हैं, उनके पानी की जो होती हैं कुनालियां उनको भरते हैं, ठीक है जी, उनके परवरों को साफ करते हैं, सफाई करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनकी चोंचों पे पॉलिश करते हैं, फिर उनको फजा में बुलंद कर देते हैं, फिर उसके बाद अपना आके नीचे नाश्ता वगैरह करते हैं और दो तीन घंटे के बाद बाजार में भी खड़े हुए, ये भी हम देखते थे कि इनकी नजरें निगाहें आसमान की तरफ ही होती थी और देख लेते थे कि इनका कबूतर कब इनकी मुंडेर पे आके बैठना चाहता है, थकने के बाद फौरन अपनी छत पे दोबारा ममटी पे पहुंच जाते थे। लिहाजा ये कबूतरबाज भी ऐसे ही हुआ कि एक दिन मैंने देखा, बल्कि एक मेरे दोस्त ने भी मुझे बयान किया, ये मुझे मेरे अपने दोस्त के जरिए पता लगा जो किसी और मोहल्ले में रहता था लेकिन दरूने लाहौर के मोहल्लों में से एक मोहल्ला था। उसे मुझे जब मैंने उसको अपने मोहल्ले की दास्तान सुनाई तो उसने मुझे अपने मोहल्ले की दास्तान सुनाई। उसने कहा हमारे मोहल्ले में एक भाई हैं जो बड़े अच्छे कबूतरबाज हैं, वो कबूतर के जरिए अपने पैगाम भेजते हैं। मुझे बड़ा इश्तियाक हुआ कि मेरे भी छत के आसपास कुछ फासले पे कुछ कबूतरबाज थे। मेरे भी दिल में इश्तियाक पैदा हुआ, जस्तजू पैदा हुई कि मैं भी देखूं। वाकई एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो एक कबूतर

बाज साहब थे, उन्होंने एक दिन ऐसा किया कि कबूतर के पाँव के साथ एक कागज बांध के डोर के साथ भेजा, और इतना सधाया हुआ कबूतर था कि वो काफी दूर जाके एक छत पे जाके बैठा, हमारे घर से काफी दूर थी। लेकिन आपको मैंने पहले कहा ना, उस जमाने में खासा होता था और लड़कियां बालियां जो होती थी बड़े शोक चंचल रंग पहना करती थी, और जाहिर है आपको पता धूप में जब सूरज की किरणें उस पे पड़ती हैं तो बाज़ोकात ने जो दूसरी जिसको कहते हैं दुपट्टा जो शॉल लिए होती थी वो उसमें शीशे भी जड़े होते थे, उसमें सूरज की शुआएं मुनक्किस होती थी, रिफ्लेक्ट होती थी। तो ये इस चीज का सबूत होता था कि जो फलां छत पे जो इंसान मौजूद है वो लाजमी सिन्फे नाजुक है। लिहाजा वो कबूतर जो था भाई साहब का उनकी छत पे उतरा और दूर से पता लगा, वो लड़के ने पहले मुझे बताया हुआ था, उसने जनाब उसके पंजे से वो रुका कागज खोला और साथ ही अपना कागज उससे नथी करके दोबारा उसको उड़ा दिया। और वो कबूतर इतना सधाया हुआ था, इतना सुधाया हुआ था कि वो दोबारा ही आके अपने मालिक की छत पे बैठा, और मालिक ने, ये तो मुझे मेरे घर से बहुत दूर नहीं थे, वो जो खातून का घर था वो काफी दूर था, लेकिन मुझे ये वाकई इस चीज का यकीन हो गया जो मेरे दोस्त ने दास्तान बताई थी कि ये जो रुका है उसमें कोई पैगाम वहाँ गया है और वो वहाँ से जवाब आया है, और जो मालिक जो कि कबूतर बाज था उसने वो खोला, वो मैंने खुद देखा, उसने खोला पढ़ा और उसने दो तीन बार इशारे हिलाया, यानी इससे लगा कि वाकई पैगाम और जवाब जो आया है उसकी मंशा का है, उसके मतलब का है। लिहाजा ये देखिएगा, ये एक और तरह का इश्क था, आगे मैं आपको इसकी मजीद तफसील बताऊंगा। अभी चलते हैं पहले वक्फे की तरफ, कहीं मत जाइएगा, ये दास्तान जब मैं दूसरे लिंक में आपसे बयान करूंगा तो यकीनन आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे और एक नई तरह के इश्क की दास्तान आपके कानों की जीनत बनेगी।

इस गजल की बंदिश भूप कल्याण में, जिसे के भोपाली कहते हैं, और उसमें फिर खूबसूरती जैसे अल्फाज, अगर कोई दूसरा भी सुर लगता तो मुनासिब जैसे वो लगा था।

0: इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
3: पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहसो तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
2: UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
2: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए,
3: सुनते रहिए।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: सुरौरताल
1: सुरौरताल
0: ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

नूरजहां ने 1000 फिल्मों के लिए गीत गाए, जिनमें से ज्यादातर मकबूले आम हुए। नस सदी से ज्यादा अरसा तक मौसीकी की सल्तनत और करोड़ों सामईन के दिलो दिमाग पर हुक्मरानी करने वाली मलका तरन्नुम नूरजहां की शख्सियत के हवाले से एशियाई लेजेंड दिलीप कुमार की अहलिया और माजी की मारूफ अदाकारा सायरा बानो का कहना है, मलका तरन्नुम नूरजहां ने प्लेबैक सिंगिंग में जो उसलूब अंदाज वजा किया वो फिल्मी मौसीकी का लाजमी जुज बन गया। उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार अक्सर ये बात करते हुए मलका तरन्नुम का तस्करा करते हैं तो कहते हैं कि दुनिया में फिल्म और म्यूजिक रिकॉर्डिंग की इजादात को मुतारिफ हुए अभी थोड़ा अरसा हुआ था, इसलिए इस तकनीक को सीखने के लिए ना तो इंस्टीट्यूशन से और ना ही फनकारों की ट्रेनिंग का अहतमाम। हैरत अंगेज अमर ये था कि नूरजहां ने इस दौर की जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत हासिल किए बगैर जो काम किया वो आज भी अनोखा और मुनफरिद है।

भारत की लेजेंड गुलूकारा लता मंगेशकर ने जब गुलूकारी के मैदान में कदम रखा तो वो मलका तरन्नुम नूरजहां के साथ कोर्स में गाया करती थी। वो सचमुच में इन्हें अपनी बड़ी बहन मानती थी और इन्हें बड़ी फनकारा भी तस्लीम करती थी। एक बात तो तय है कि कुदरत ने जो आवाज और सुर मलका तरन्नुम नूरजहां को दिया वो किसी दूसरे के पास

मैडम नूर जहाँ एक अहद थी, एक अदाकारा, एक इदारा जो दुनिया फानी से तो कुछ कर गई लेकिन नस्लों तक के सीखने को बहुत कुछ छोड़ गई। नूर जहाँ का शुमार इन फनकारों में होता है जो दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बनी, बल्कि तरन्नुम के गाए गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं। 9 वर्ष की उम्र में नूर जहाँ की आवाज़ ने पंजाबी मौसीकार गुलाम अहमद चिश्ती की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। उन्होंने नूर जहाँ के लिए खसूसी तौर पर नातें, गजलें और लोक गीत कंपोज किए। फिर नूर जहाँ का खानदान कलकत्ता मुंतकिल हो गया, जहाँ मारूफ गुलूकारा मुख्तार बेगम ने नूर जहाँ और इनकी दो बहनों की न सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स को भी इनके नाम तजवीज किए। 1935 में उन्होंने पिंडी कोड़ी से अदाकारी का आगाज किया। इसके बाद फिल्म मिस्र का सितारा में अदाकारी के साथ साथ कई गीतों को अपनी आवाज भी दी। 1937 में बनने वाली फिल्म हीर सयाल में हीर के बचपन का किरदार अदा किया। फिर वो लाहौर चली आई और कुछ अरसा यहाँ गुजारने के बाद वापस बम्बई चली गयी, जहाँ अदाकारी के साथ साथ उन्होंने गुरुकारी का सफर भी जारी रखा। वो कुछ अरसे बाद वापस चली गयी, सारी तवज्जो प्लेबैक सिंगिंग को दी।

मेरा माही चैन शरीरा, जिंदा है लाहौर, पाइंदा है लाहौर। ए पुत्र हटा दे नई विगदे, की लब दे फिरे बाजार कुड़े। मलका तरुण ने अपने मिली नगमों से वतन की हिफाजत करती हुई गयूर कौम को पैगाम दिया। सियालकोट तू जिंदा रहेगा, तू जिंदा रहेगा, मेरा सोहना शहर कसूर नहीं। रब दिया रखा, ये वो गीत थे जिन्होंने पाक अफवाज के हौसलों और जज्बों को बढ़ा दिया।

1986 में जब वो शुमाली अमेरिका के दौरे पर थी तो इन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई। डॉक्टर्स ने एंजाइना की तकलीफ बताई, जिसके बाद इनकी सर्जरी की गई। सन 2000 में कराची में इन्हें दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। यूं ये दिलकश आवाज 23 दिसंबर सन 2000 को अपनी महक यहीं छोड़कर हमसे हमेशा के लिए दूर हो गई।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: Admissions open for fall 2026. Explore the diverse degree programs offered by Faculty of Media and Mass Communication at University of Central Punjab. We are offering BS Media and Communication Studies, BFA Visual Communication Design, BFA Visual Art. Contact us at 080-000-827 or apply on admissions@ucp.edu.pk. Faculty of Media and Mass Communication, University of Central Punjab.
1: एक नया अंदाज,
2: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
2: एक नई लगन,
1: UCP में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1,
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: UCP की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।
3: अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राफिया मुस्तफ़ी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आज हमारे साथ FM 92.6 पे मिस सारा लियाकत, जनरल मैनेजर ऑफ टुगेदर कंपनी मौजूद हैं। टुगेदर इज़ अ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सो हम इसी हवाले से आज इनके साथ एक डिस्कशन करेंगे कि अब तक का हमारा टुगेदर के साथ कैसा सिनेरियो रहा है। स्टूडेंट्स अब तक जितने भी इंटर्नशिप पे गए हैं, उन्होंने किस तरीके से अपनी वर्किंग्स को वहाँ पर एग्जीक्यूट किया है। सो इन डिटेल हम इनके साथ डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम निसारा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है।
4: वालेकुम सलाम राफिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह,
4: थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। प्लेजर टू बी हियर पार्ट ऑफ FM 92.6। वेल, जैसा कि आपने बताया कि टुगेदर और फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर का MOU साइन हुआ था 2 years ago, और हमारे CEO और फादर अशरफ और फहमीदा सुल्ताना के साथ बहुत अच्छी सिटिंग हुई, जहाँ पे डिफरेंट थॉट्स हमने शेयर किए थे। एंड बीइंग द एलुमनाई ऑफ UCP, मैं अपने यूनिवर्सिटी के लिए कुछ सर्व करना चाहती थी, और मुझे बहुत अच्छे लोग यहाँ पे मिल गए, जो कि नुहेज़ एंड फातिमा हैं, जिन्होंने मुझे कोलैबोरेट करवा दिया अपने डिपार्टमेंट के साथ, और हमें बहुत मौका मिला यहाँ के स्टूडेंट्स को इनवाइट करने का, इंटर्नशिप प्लान्स वगैरह उनके लिए शेयर करने का और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज शेयर करने का। सो आज उसको हमें अपनी इस FM के थ्रू बताने का भी मौका मिला है। सो आई एम थैंकफुल फॉर नुहेज एंड फातिमा कि उन्होंने आज इनवाइट किया हमें।
3: ठीक है। सो मिस सारा, एज यू जस्ट सेड के यू आर द एलुमनाई ऑफ UCP, सो हाउ डिड यू रिलेट टू द स्टूडेंट्स जो आपके पास आए? डेफिनेटली एक आई थिंक एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा होगा। सो आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट दैट एक्सपीरियंस। अब तक जितने आपके पास स्टूडेंट्स आए, लाइक बैक इन 2 years, राइट? सो कैसा रहा काम, और स्टूडेंट्स के हवाले से थोड़ा सा बताएं, कैसी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही, टुगेदर ने उनके लिए कैसे टास्क इनिशिएटिव लिया उसके ऊपर, और क्या क्या चीजें प्लान आउट की?
4: ठीक। अच्छा राफी, ऐसा है कि मुझे, जैसा कि मैंने आपको बताया, आई रियली वॉन्ट टू सर्व टू द स्टूडेंट्स ऑफ UCP। जैसा UCP ने मुझे ग्रूम किया, बनाया, यहाँ तक पहुंचाया, मैं चाहती थी मैं वहाँ के स्टूडेंट्स को भी कुछ ना कुछ, एक अर्ज थी शुरू से, फ्रॉम बीइंग द माय अराउंड 7 years of experience in HR एंड नाउ

0: GM ऑफ अ कंपनी, मुझे एक अर्ज थी कि मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ करूं. सो मुझे अच्छे लोग भी मिल गए. ये एक लकीली एक होती है एक चीज के हमें वो चीज एड ऑन हो जाए कि हमारे जो कोलैबोरेशन हुई. तो बहुत से स्टूडेंट्स आए हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के भी और स्पेशली लैंग्वेज और लिटरेचर के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स. तो बहुत कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स थे, बहुत उनमें स्पार्क था, बहुत वो सीखना चाहते थे, उनमें भी एक अर्ज थी. मुझे अपने स्टूडेंट के स्टूडेंटशिप का जमाना याद आ गया जब मेरे में भी वो अर्ज थी सीखने की और मैंने भी अपनी इंटर्नशिप्स की थी बहुत डिफरेंट जगहों पे. सो पीपल वर ब्रिलियंट देयर, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लेके काम किया, हमने उनको डिफरेंट टास्किंग दी. बहुत कुछ है हमारे डिपार्टमेंट टुगेदर के डिपार्टमेंट में, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ क्रिएटिविटी है, डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क है, बहुत चीजें हैं हमारे पास उनको सिखाने के लिए. सो ना सिर्फ राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है, कॉन्टेंट राइटिंग है, बट यस लेटर राइटिंग है, न्यूज लेटर राइटिंग है, ई मेल मार्केटिंग है, उसके बाद कॉर्पोरेट ईमेल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया कंटेंट है, उसके बाद कॉर्पोरेट लेटर्स राइटिंग है, कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट कैसे ईमेल्स का आपस में क्वेश्चन करते हैं, आंसर करते हैं, उस प्रॉपर वो सारा हमने उनको गाइड किया. ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर का जो सिलेबस है वो एक बुकिश थिंग है, जहाँ वहाँ पे उनको एक्सप्लोर करने का जो मौका मिला वो था कि रियलिटी में कौन कौन से काम होते हैं इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. एंड लकीली द स्टूडेंट्स वर लाइक उनके लिए क्लियर था कि दिस डिपार्टमेंट वाज ऑल सुपरवाइज बाय आवर सीईओ फातिह अशरफ. उन्होंने डायरेक्टली सीईओ के साथ काम किया और सीईओ ने उनको बहुत गाइड किया बिकॉज फहमीदा सुल्ताना के डॉक्टर फहमीदा सुल्ताना के स्टूडेंट्स आए थे, उनके डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स आए थे. और आई एम हैप्पी कि स्टूडेंट्स ने बहुत मतलब कि लिया, पार्ट लिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एक स्पार्क शो किया दैट यस दे वर द स्टूडेंट्स ऑफ यूसीपी.
1: ठीक है. अच्छा मैं ये पूछना चाहूंगी कि इज देयर एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर द इंडक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, या जितने भी स्टूडेंट्स आपको रेकमेंड किए जा रहे हैं, या वो अपना एक आपके आपने जैसे कोई
0: क्राइटेरिया सेट नहीं होता. हमारी टास्किंग सेट होती है हमारी कॉर्पोरेट ऑफिसेज में ना, टास्किंग सेट होती है. ऑब्वियसली जो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है उसको डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं,
1: ठीक है,
0: उसके कैलिबर के अकॉर्डिंगली.
1: ओके.
0: ऑब्वियसली इंटर्नशिप,
1: एंड हाउ डू यू डिफाइन दैट कैलिबर के क्या स्टूडेंट का है, डू यू टेक एनी टेस्ट या कुछ इस तरीके से?
0: डेफिनेटली हमारे अपने भी जो कॉर्पोरेट सेक्टर में हायरिंग भी होती है ना, वो हम प्रॉपर टेस्ट लेते हैं, क्रिएटिव टेस्ट लेते हैं.
1: ओके. एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछ रही हूँ बिकॉज जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं हर एक एप्टीट्यूड लेवल होता है, राइट. सो हमारे लिए भी ये जाना जरूरी है ताकि हम डिपार्टमेंट्स में अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे स्टूडेंट्स अब तक आफ्टर देयर ग्रेजुएशन और इन द मिड ऑफ देयर ग्रेजुएशन वट एवर द लेवल दे आर एट, वो किस लेवल पे स्टैंड आउट कर रहे हैं. सो इस लिहाज से डू यू टेक एनी टेस्ट?
0: हम टेस्ट लेते हैं, हमारा प्रॉपर एक परफॉर्मा होता है, हमने एक क्राइटेरिया सेट किया होता है, वो डेली वीकली मंथली बेसिस पे सेट होकर डिपार्टमेंट को सेंड किया जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटर्नशिप.
1: दैट्स ग्रेट.
0: सो दैट द टीचर्स एंड द फैकल्टी नो, जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स वहाँ पे रखवाए हैं हमारे पास, स्पेशली नुहेज एंड फातिमा को, वो फॉर्म्स जाते हैं. हमारे एचआर डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है, वो सारे रिपोर्टिंग करके, वो सारी फाइलिंग करके वो उनको सेंड करते हैं, सो दैट दे वुड नो कि सिर्फ बुकिश वर्ल्ड में ही स्टूडेंट्स अपना वो सारा शो अप कर रहे हैं, अपने क्रिएटिविटी और अपना वो सारा स्पार्क, या कॉर्पोरेट में जाके भी उन्होंने वो शो अप किया है. सो यस, उन्होंने बहुत सीखने का, इवन स्टूडेंट्स हैव एक्सटेंडेड देयर इंटर्नशिप. उनको इतना मजा आया यहाँ पे कि उन्होंने 4 वीक्स की इंटर्नशिप्स को एक्सटेंड करवा के 6 वीक्स 8 वीक्स तक लेके गए. सो इट्स अबाउट इट ऑल.
1: बहुत अच्छा लगा अब तक आपसे बात करके मिस सारा. अभी किस तरह से स्टूडेंट्स आए और काफी हद तक क्लैरिटी मिल गई. इसी के साथ अभी हम एक छोटी सी ब्रेक पर चलेंगे और देन वी विल कंटिन्यू फर्दर आवर डिस्कशंस. स्टे ट्यून्ड टू FM 92.6.

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।
1: जी वेलकम बैक ऑन FM 92.6। हमारे साथ है मिस सारा, जनरल मैनेजर एट टुगेदर कंपनी, और बहुत मजे की गपशप लग रही है रिगार्डिंग स्टूडेंट्स, देयर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, और किस तरह से हम चीजों को फर्दर फ्यूचर के लिए देख सकते हैं। जी मिस सारा, अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि यूजुअली मैं लैंग्वेज डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर के हवाले से ही बात करूंगी कि व्हेन अ स्टूडेंट इज गेट डन विद द ग्रेजुएशन, राइट, अब देर इज़ अ हरी टू गेट जॉब्स और डेफिनेटली दे लुक अप फॉर द अपॉर्चुनिटीज। सो अगर मैं इसी डिपार्टमेंट के रेलिवेंस से बात करूँ, हाउ डू यू फाइंड के कॉरपोरेट लेवल पे एक स्टूडेंट जो इस डिपार्टमेंट का है उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, वो किस तरह के डिपार्टमेंट्स में इनरोल हो सकते हैं? बिकॉज यूजली जब इन स्टूडेंट से पूछा जाता है, आई डोंट नो, दैट्स अ टैबू, और वट इट इज इधर वो कहते हैं या तो हम टीचिंग कर सकते हैं या हम CCA या
2: CA। यहीं पर मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगी और इधर सबको सुनने वालों को भी बताना चाहूंगी कि स्पेशली जो इंग्लिश डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, जो भी ग्रेजुएट होते हैं, यूजुअली यही समझा जाता है कि वो टीचिंग पे जाएंगे, वो सिर्फ एक टीचर ही बन सकते हैं या प्रोफेसर बन जाएंगे इन फ्यूचर। बट देयर आर अ स्कोप ऑफ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंग्लिश डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स, बिकॉज इंग्लिश ही एक यू नो कंटेंट क्रिएशन है। इसमें मैं अब आपको काउंट करवाऊंगी कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो ओपन अप होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। इट्स अ ह्यूज वर्ल्ड ऑफ कंटेंट क्रिएशन इन द सोशल मीडिया, इन द लाइक हमारी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड, अभी पहले भी मैंने स्टेट किया था कि बहुत सी चीज़ें ओपन अप होती हैं, लाइक कंटेंट क्रिएशन है, सोशल मीडिया का सारा कंटेंट क्रिएट होता है, उसमें क्रिएटिविटी ऐड हो जाती है, उसमें डिजाइनिंग ऐड होती है, डिजाइनिंग में डिफरेंट कंटेंट आता है, वो सारा कुछ उनके अंडर आ जाता है। उसके अलावा एक प्रपोजल राइटिंग आती है, उसमें ईमेल मार्केटिंग आ जाती है, उसमें व्हाट्सएप मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग, एक मार्केटिंग का एक और सेक्टर ओपन होता है जिसमें सारा कंटेंट क्रिएट करते हैं, कंटेंट राइटर्स हैं। अब जैसे हमारे कॉर्पोरेट कंपनी में प्रॉपर डिपार्टमेंट है, क्रिएटिव डिपार्टमेंट, उसमें हमारे पास राइटर्स ही हैं जो कि इंग्लिश डिपार्टमेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के भी आते हैं और UCP के भी स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने प्रॉपर जॉब भी की है हमारे साथ, और उन्होंने एक न्यू चैप्टर ओपन किया कंटेंट का। लाइक हर किसी का अपना थॉट ऑफ माइंड है कंटेंट क्रिएट करने का। सो दिस इज नॉट ओनली अ फील्ड ऑफ टीचिंग के इंग्लिश पढ़ के तो आपने सिर्फ टीचर ही बनना है, देयर आर अदर स्कोप ऑफ वर्ल्ड, लाइक वो कंटेंट राइटर बहुत बहुत बड़े कंटेंट राइटर्स बन रहे हैं। और हमारे UCP के ही स्टूडेंट्स, इसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स, हमारे लिंक्डइन भरा हुआ है जो स्टूडेंट्स किस किस जगह पे पहुंचे हुए हैं, लाइक सिर्फ यहाँ पे नहीं, हमारे कॉर्पोरेट के साथ भी नहीं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमारे राइटर्स को इनवाइट करते हैं इधर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को, इंग्लिश डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को। लास्ट ईयर ही हमारी कुछ स्टूडेंट्स लॉ फर्म में गए, उन्होंने प्रपोजल राइटिंग करवानी थी, कुछ मतलब प्रपोजल राइटिंग थी, कुछ उन्होंने स्टोरी राइटिंग करनी थी, उन्होंने अपने कुछ काम करवाने थे, वो स्टूडेंट्स लॉ डिपार्टमेंट तक भी गए। उसके अलावा और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को इन्वाइट करते हैं और प्रॉपर उनको ना सिर्फ इंटर्नशिप्स, और हम मैं अगर अपनी कंपनी की बात करूँ तो हमारे पास सिर्फ इंटर्नशिप्स नहीं, हमारे पास जॉब्स भी हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अच्छे इंटर्नशिप्स भी करके गए हैं और हमने उनके लिए उनको एक स्लॉट में, यस इट इज इंटर्नशिप लीडिंग टू जॉब एक्चुअली,
1: ठीक है।
2: सो जिन्होंने अच्छा काम किया है और CEO एंड और मैनेजर्स आर सेटिस्फाइड विद देम, उन्होंने उनको जॉब ऑफर्स भी की है,
1: ठीक है,
2: और पीपल आर डूइंग दैट और वी आर एंजॉयिंग देयर कंटेंट, उनकी क्रिएटिविटी, जो जो जो स्टेट ऑफ माइंड से वो एड ऑन करते हैं, जो पॉइंट्स बताते हैं, जो चीजें बता रहे होते हैं, तो पता चलता है कि वो UCP के इंग्लिश डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं। एंड यस, फैकल्टी हैज डन अ अमेजिंग वर्क ऑन स्टूडेंट्स, उन्होंने एक काम किया, उन्होंने मेहनत की अपने स्टूडेंट्स को ग्रूम करने पे, उनको बताने पे, उनको पढ़ाने पे कि उन्होंने आगे कैसे करना है। यस, एक पार्ट होता है कि यू नो यूनिवर्सिटी का एक पार्ट अलग है और एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड का पार्ट अलग है, जो एक मिस हो जाता है कहीं ना कहीं, आई थिंक फैकल्टी से या यूनिवर्सिटी से। सो उसके लिए हमारे पास लास्ट ईयर भी फैकल्टीज कॉन्वेंट स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 2 years बैक ओवरऑल यूनिवर्सिटीज ने फैकल्टी एंड कॉर्पोरेट लिंकेजेस को کروانے لیے. میں نیکسٹ پوائنٹ ادھر ہی لے کے آ رہی تھی کہ یہ تو چلے ایک اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ہی بات ہوگی. اسٹوڈینٹس اپنے ٹیچرس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, رائٹ؟ اسٹوڈینٹس ہی ہیں جو ان کو پاتھ ویز پرووائڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے ڈفرینٹ جگہوں پہ جانا ہے. سو ہاؤ ڈو یو شیپ دا مائنڈز آف دوز فیکلٹی ممبرز, ان کے لیے ایسی کیا اپرچونیٹیز ہیں ٹو گو ان ٹو دا انڈسٹری, وہ کارپوریٹس میں جائیں, وہ دیکھیں چیزیں کیسے چل رہی ہیں, تاکہ وہ اپنے اسٹوڈینٹس کو اکارڈنگلی اپ ڈیٹ کر سکیں, چیزوں کا بتا سکیں.
3: امیزنگ انیشیٹو فرام دا یونیورسٹی ایز ویل کہ انہوں نے یہ فیکلٹیز کانوینٹ اسٹارٹ کروایا, اینڈ ہمارے پاس انگلش ڈپارٹمنٹ کے ہی کافی فیکلٹی ممبرز آئے اور انہوں نے کانوینٹ کی, اٹ واز لائک 5 ٹو 10 ڈیز کانوینٹ سیشنز, اور
2: اٹ واز کنڈکٹڈ,
3: میں بالکل ابھی آپ کو بتا رہی ہوں, اٹ واز کنڈکٹڈ بائی اور سی ای او اور فادر شریف, and it was the whole of you know 360 angle of switches of thoughts and everything like that, because faculty bhi ek university ek us world mein rehke us tarike se unki wo you know
2: thode break ki ja jati hai bilkul.
3: So wo ek unke sath mil ke unko corporate explorer was a very important thing. I appreciate the initiative of the university. اینڈ وہاں پہ جب ہمارے سی ای او اور ان پی ایچ ڈی ڈاکٹرس کی آپس میں مطلب چینج آف تھاٹس وغیرہ ہوئے, تو پتہ چلا کہ کہاں کہاں پہ لیک کرتی ہیں چیزیں. وی شیئرڈ آور ایکسپیرینس کہ آپ کے جب انٹرنشپ اسٹوڈینٹس آئے تو کہاں کہاں پہ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا آلریڈی, بٹ اسٹل بہت اس سے امپروومنٹ آئی. اینڈ وہ اسکانمنٹ یہاں پہ جب کمپلیٹ ہوئی اس میں کیا تھا کہ ہم نے بتایا کہ کارپوریٹ کے لیے آپ لوگ کیسے پریپیئر کریں اسٹوڈینٹس کو, کیا کیا چیزیں تھوڑی بہت ایڈ کر لیں. Obviously پی ایچ ڈی ڈاکٹرز جو یہاں کے فیکلٹی ممبرز ہیں اور دوسرے بھی جو فیکلٹی ممبرز ہیں ان سب کو پتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ہم نے اپنے کارپوریٹ پوائنٹ آف ویو سے ان کو گائڈ کیا, ان کو بتایا, اینڈ دیٹ فیو تھنگز ور دا آئی اوپنر فار دیم ٹو.
2: اوکے,
3: سو اس کے بعد جو فیکلٹیز نے وہاں پہ اسکانمنٹ کی ہمارے ساتھ ٹوگیدر کمپنی میں جب آئے, انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں آ کے واپس ریپرزینٹ کیا, دے انوائٹیڈ می ایز ویل. انہوں نے یہاں کے باقی فیکلٹی ممبرس کو بتایا کہ وٹ وی ہیو بین ٹاٹ ان ٹوگیدر کمپنی بائی دا سی ای او. سو یہ ایک امیزنگ تھنگ تھی, اور یہ آئی واز لائک جب میں اسٹوڈنٹ تھی اور میری دفعہ کی یہ چیزیں تب ایسا نہیں تھا, انٹرنشپ پلانز نہیں ہوتے تھے اتنے اسٹرکٹلی اور اتنے فالو نہیں کرتے تھے, مطلب ایک کرائٹیریا نہیں سیٹ تھا. اب تو انٹرنشپس وغیرہ کمپلسری ہیں, مینڈیٹری کر دی گئی ہیں.
2: اوکے اوکے,
3: سو اب یہ جو فیکلٹیز کانوینٹ سے ایک ایڈ آن ہو گیا, نہ صرف اسٹوڈینٹس کی برین اسٹارمنگ ہوگی, بٹ یس فیکلٹی کے لیے بھی ایک آئی اوپنر, ان کے لیے بھی ایک لرننگ کا موقع مل گیا.
2: دیٹس ونڈرفل مس سارا. یہاں پر ہی ابھی ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی, اینڈ دین پھر اس کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ آن FM 92.6.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौर ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

0: इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 0423111877 पर राब्ता कीजिए।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

0: कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमो की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।
1: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
2: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
3: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
1: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
4: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
4: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं, इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
5: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
6: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز UCP کی دنیا FM 92.6